0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला मालती

0: वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாசக புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्. अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति. अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति. एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति. तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते. तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति. एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति. केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति. गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्. केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्. धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गत शनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः. श्रीजोशी स्ववर्त

0: विमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरम् अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी नेरम 7 मणि।

0: हार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो से इस बेहद खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ जया भारती और आज तारीख है 27 जुलाई। श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के इसी ऊर्जावान विचार के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। मेहनत और सादगी का उनका यही मंत्र आज हमारे इस सफर की शुरुआत की प्रेरणा है। वैसे डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और बेहद दिलचस्प किस्से हैं जिन पर हम आज के कार्यक्रम में बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, साथ ही जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज और मौसम का ताजा मिजाज और आज के इतिहास। तो मनोरंजन, जानकारी, इतिहास और डॉक्टर कलाम की यादों के इस लाजवाब सफर को मिस मत कीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों और इन दिलचस्प शख्सियतों के बारे में पूरी जानकारी के लिए कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज मेरी को होस्ट हैं सुभद्रा रामचंद्रन। हेलो सुभद्रा।
1: हेलो जया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लिसनर्स। वेक अप एंड स्टार्ट द न्यू वीक। We are here with another edition of Aaj Saveri, so get ready and settle down as we begin the program with some headlines.
0: बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी।
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said, developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite

0: despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है. आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है. भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे.
2: प्रधानमंत्री संग्रहालय में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया. यह आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का एक जीवंत अनुभव प्रदान करेगा. होलो बॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके भारत के प्रमुख नेताओं के दृष्टिकोण, विचारों और योगदान को इंटरैक्टिव 3D के माध्यम से प्रस्तुत करता है. इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दर्शाया गया है, जिसमें आगंतुक इन प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद कर सकते हैं. इन पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों को गौरवान्वित करना और देश के दूरदर्शी नेताओं की विरासत संरक्षित करना है.
0: इन आवर बायलिंगुअल लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीच टुनाइट एट 9:30 PM वी विल ब्रिंग एन इनसाइटफुल डिस्कशन ऑन वेक्टर बोर्न डिजीजेस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड पब्लिक अवेयरनेस विद डॉक्टर अक्षय धारीवाल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल एंड डॉक्टर पीयूष रंजन professor in the Department of Medicine, AIIMS, New Delhi. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444. 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAir. The Ministry of Jal Shakti has said that Rajnandangaon district in Chhattisgarh has emerged as a national front runner in water conservation through scientific planning and community participation under the Catch the Rain campaign and Mission Jal Raksha. More than 60,000 water conservation and recharge structures have been created across 662 villages. Over 500 defunct borewells have been converted into recharge shafts. More than 600 injection wells have been linked with over 1,700 mini percolation tanks and over 2,500 water bodies have been geotagged.
2: आंध्र प्रदेश की हथकरघा और वस्त्र मंत्री एस सविता ने बुनकरों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. अमरावती में दिग्गज हथकरघा नेता प्रगदा कोटैया की जयंती पर कल उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रीमती सविता ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने इस अवसर को राज्य उत्सव घोषित किया है. श्रीमती सविता ने कहा कि NDA सरकार बुनकरों के लिए सम्मान जनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी उपाय लागू कर रही है.
0: Going over to some sports now. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in the allotted 20 overs. Earlier, opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in the allotted 20 overs. Meanwhile, India have reclaimed the number one spot in the ICC Men's T20I rankings after clean sweeping the three-match series against Zimbabwe at Harare. The reigning T20 World Champions regained the top spot from England.
2: और जब खेलों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की भी बात करें, जहां भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार

0: प्रदर्शन किया।
1: There it is. Commonwealth record for the Indian legend. What a weightlifting machine she is.
0: तो भाई ये सुनते हैं कि इस जीत के बाद मीराबाई चानू ने क्या कहा।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से करें सुभद्रा।
3: Yes, let's start with news from Chennai, Jaya. The Greater Chennai Corporation has launched several measures to bring out of school children back to classrooms and prevent dropouts. The initiatives include appointing psychological counselors in schools and resettlement colonies, conducting socio-economic surveys to identify vulnerable children, organizing special camps for Aadhaar and birth certificates, and improving coordination with neighboring districts to ensure better access to schools. Greater Chennai Corporation Commissioner G.S. Samiran said the civic body will increase awareness about physical and mental health, step up action against drug abuse near schools, and work with the Madras School of Social Work to carry out socio-economic surveys in vulnerable areas. Moving over to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwara has called for greater efforts to promote physiotherapy as part of preventive health care and strengthen sports medicine in the state. Speaking at the Bangalore Physiotherapist Network Colloquium in Bengaluru yesterday, he said the government will explore making physiotherapy services available at the district level to provide better support for athletes. Dr. Parmeshwara said physiotherapy should not be limited to treating injuries but should become a regular part of healthy living. He also stressed the need to ensure quality healthcare reaches every citizen. Jaya?
0: हाँ, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खबरों की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। दिल्ली से एक और अच्छी खबर है हमारे पास कि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जन कल्याणकारी पहलों और शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। और बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ठाणे में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से तीन हाथ नाका यातायात जाम निवारण परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना से सिग्नल पर प्रतीक्षा समय घटकर 15 सेकंड होने की उम्मीद है। मंत्री ने ठाणे तटीय सड़क, पूर्वी फ्रीवे विस्तार, ठाणे बोरीवली दोहरी सुरंग और प्रस्तावित पॉड टैक्सी नेटवर्क जैसी चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुंबई विश्वविद्यालय अपने कलीना परिसर में इस माह की 29 तारीख को भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पोस्टर और मॉडल निर्माण प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू अध्ययन केंद्र, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अध्ययन बोर्ड और पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 53 कॉलेजों के लगभग 125 छात्र इसमें भाग लेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 भारतीय भाषाओं

0: कक्षाओं में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।
1: एंड जया, नाउ लेट्स गो टू हैदराबाद। Union Minister G. Kishan Reddy inaugurated the newly constructed Komuravelli Railway Station in Telangana yesterday, marking a significant boost for commuters and devotees visiting the Sri Mallikarjun Swami Temple. Built at a cost of 6 crore rupees under the Manoharabad Kotapalli New Railway Line project, the station has been equipped with modern amenities reflecting the cultural heritage of the temple. And we have another one from Hyderabad. The Telangana Agriculture Department is organizing a 3-day seed mela from today to July 29. At Raitu Vedikas in Mandal headquarters across all 33 districts. The fair aims to help farmers tackle the impact of El Nino by promoting low water crops and providing quality seeds through dedicated counters. Agricultural scientists will guide farmers on crop selection, climate resilient farming and sustainable practices. Certified seeds recommended by research institutions will also be available. The agriculture director has appealed to farmers to attend the seed mela at their nearest Raitu Vedika and purchase suitable high quality seeds for the upcoming season.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज उत्तर बंगाल के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सिलीगुड़ी में वर्धमान रोड पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और श्रावणी मेले के दौरान जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री सिक्किम के नामची जिले में हाल ही में हुए सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि सौंपेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब रुख करते हैं मौसम का और जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. Temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius. A generally cloudy sky with light rain will be seen in Bengaluru. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 25 to 33 degrees Celsius.
0: तो अब समय है आज के इतिहास के बारे में बात करने का कि उन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आज अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1694 की, जब आज ही के दिन किंग विलियम तृतीय और क्वीन मैरी द्वितीय द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के लिए आधिकारिक तौर पर रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, जिसने आधुनिक सेंट्रल बैंकिंग की नींव रखी।
1: 1939, the Crown Representatives Police was established in India, which is renamed the Central Reserve Police Force, CRPF, in 1949, and is today India's largest central armed police force.
0: और आज ही के दिन 1940 में यानी कि दुनिया भर में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर बक्स बनी पहली बार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी दिखाया गया था।
1: वेरी नाइस, वेरी क्यूट।
0: बक्स बनी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार बनने वाला वह पहला दुनिया का एनिमेटेड चरित्र था और यह केवल एक कार्टून चरित्र नहीं बल्कि एक वह वैश्विक पॉप कल्चर के इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रतीक है।
1: दे वर अ फैमिली यू नो ऑफ कॉल्ड लूनी ट्यून्स।
0: बिल्कुल, वार्नर ब्रदर द्वारा निर्मित यह शातिर और गाजर चबाने वाला खरगोश पिछले 85 से अधिक सालों से दुनिया को हंसा रहा है।
1: यस आई नो, आई स्टिल वॉच देम राइट। 1955, the Austrian State Treaty officially came into force, restoring Austria as a sovereign, independent and democratic republic.
0: और अगर हम इससे कुछ दिनों पहले जाएं, 27 जुलाई 1949 को उस दिन दुनिया के पहले जेट इंजन से चलने वाले कमर्शियल पैसेंजर प्लेन डी हैविलैंड कॉमेट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी थी और इस जेट इंजन के आने से हवाई यात्रा का समय

0: आधा हो गया.
1: And 2012, the spectacular opening ceremony of the 30th Summer Olympic Games was held in London, directed by acclaimed filmmaker Danny Boyle. And Jaya, today is, you know what, National Sleepyhead Day. This has actually happened in Europe, Finland may. It is a traditional Finnish celebration in which the last person to wake up is playfully splashed with water. So Jaya, if you decide to sleep even after, you know, your alarm goes off, what will you do? And I'm going to wake you up then.
0: बिल्कुल. तो अगर अलार्म बजने के बाद भी अगर आप चादर तान कर सो रहे हैं या सोने का मन बना रहे हैं तो संभल जाइए कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर आप पर भी ठंडा ठंडा पानी डाले.
1: I don't know where you live, otherwise I would come and
0: तो इसलिए मैं सभी श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से उठिए और मुस्कुराते हुए अपने जीवन की शुरुआत कीजिए.
1: Yes, of course. So let's move on to our next section. We're starting with Mr. Kalam, I guess, 2015.
0: Ji.
1: APJ Abdul Kalam, as the 11th president and celebrated aerospace scientist, passed away in Shillong this day. This happened in the year 2015. And of course, he played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs.
0: बिल्कुल. हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो अखबार बेचते बेचते एक दिन देश का सबसे बड़ा अखबार बन गया.
1: यस.
0: रामेश्वर के उस लड़के की बात जिसे दुनिया ने मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति कहा.
1: यस, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007.
0: बिल्कुल.
1: एंड ऑल्सो यू नो ऑफकोर्स हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड पॉपुलैरिटी गेन्ड हिम द एपिथेट्स मिसाइल मैन एंड पीपल्स प्रेसिडेंट. And Jay, he also wrote several books, you know, autobiography, Wings of Fire, this in 1999, and a book titled Ignited Minds in 2002. And among his numerous awards were three of country's highest honors, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the Bharat Ratna.
0: जी, आपने इनके बारे में बात की है जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम इनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे. तो बताना चाहूँगी कि रामेश्वरम का वो तटीय इलाका जहाँ लहरें किनारे से टकरा कर लौट जाती थी, वहीं एक छोटा सा बच्चा लहरों के पार उड़ने वाले परिंदों को देखता था और उसने वहीं से तय कर लिया था कि एक दिन उसे भी आसमान छूना है. गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन इरादे फौलाद से भी मजबूत थे. सुबह 4 बजे से उठकर गणित पढ़ना, फिर स्टेशन जाकर ट्रेन से गिरते हुए अखबारों के बंडल उठाना और घर घर तक पहुँचना. कलाम साहब कहते थे कि कठिनाइयाँ इंसान को सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है. और फिर भारत ने देखा विज्ञान का वो चमत्कार, चाहे वो देश का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 हो या फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें. पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया देखती रह गई. डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया. लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सादगी. जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुल गए. वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए. 27 जुलाई 2015 शिलांग का वो मंच जहां वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, शब्द थे रहने योग्य पृथ्वी. और अचानक वो सितारा हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो गया. डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी किताबें जिनका भी आपने जिक्र किया, उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं की रगों में जोश भरते हैं. वो अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं. और आज देश तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसकी मजबूत बुनियाद में कलाम साहब की ही विजन धड़कता है.
1: And friends, today is the birth anniversary of Bharati Mukherjee, a notable Indian-born author and professor known for her exploration of immigration and identity in her literary works. Born in Kolkata, 1940, she exhibited early literary talent and pursued higher education in English and ancient Indian culture before relocating to the United States for advanced studies. Mukherjee faced challenges as an immigrant, particularly in Canada, where she experienced discrimination. Themes that are prevalent in her writings. And she later moved to the US, embracing the concept of the melting pot, identifying simply as an American with Bengali roots. Her famous novels are Jasmine, Tiger's Daughter, Wife, and The Holders of the World.
0: आज की तारीख सिनेमा जगत के एक ऐसे चेहरे से भी जुड़ी है जिनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है. आज हिंदी फिल्मों के कालजयी अभिनेता अमजद खान की भी पुण्यतिथि है. फिल्म शोले के गब्बर सिंह के रूप में उनका निभाया किरदार और उनके डायलॉग

0: आज साहित्य की दुनिया के लिए भी एक बेहद संजीदा दिन है। आज राजस्थान की माटी से निकले हमारे समय के जाने माने संत कवि पंडित शिवदीन राम जोशी की भी पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2006 को वे इस नश्वर संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। जोशी जी के बारे में एक बेहद विस्मयकारी बात यह है कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष की कोमल आयु से ही साहित्य सृजन और काव्य लेखन शुरू कर दिया, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहा। समाज में व्याप्त कुरूतियों और पाखंड पर करारी चोट करने वाले जोशी जी ने ज्ञान और वैराग्य के सच्चे साधक थे। वे अक्सर अपनी रचनाओं में लिखते थे कि अनुराग में प्रेम है, त्याग में प्रेम है, ज्ञान ही प्रेम है, ध्यान ही प्रेम है, राम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है।
1: Country singer, songwriter Bobby Gentry, whose real name is Roberta Lee Streeter, took birth this day in Chickasaw County, Mississippi. She learned to play the piano after watching the church pianist and later taught herself how to play the banjo, guitar, bass and vibes. Bobby was one of the first lady artists who wrote and produced her own material. Her late 60 hit Ode to Billy Joe earned her 3 Grammys. Let's listen to a bit of it right now.

आज 27 जुलाई को देश अपनी उस जांबाज बेटी को भी याद कर रहा है जिसने भारत माता के पैरों में बंधी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हाथों में

0: बंदूक उठा ली थी। आज महान महिला स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त जी की जयंती है। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे जहन में पुरुषों के नाम पहले आते हैं, लेकिन कल्पना दत्त ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई में देश की बेटियां किसी से भी पीछे नहीं थी। उनका जन्म 27 जुलाई 1913 को हुआ। वे प्रख्यात क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें दुनिया मास्टरदा के नाम से जानती थी, उनके क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी।
1: And friends, we remember Bob Hope on his death anniversary. British-born American entertainer, comic actor known for his rapid-fire delivery of jokes and one-liners and for his success in virtually all entertainment media. And we also remember Tony Martin on his death anniversary, an American pop singer, movie actor whose handsome looks and smooth baritone made him one of the most celebrated all-round entertainers of his era.
0: आज शुरू की देवी पद्म भूषण डॉक्टर के एस चित्रा जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन वो केरल में जन्मी थी और दुनिया उन्हें मैडली क्वीन के नाम से जानती है। तो सुनते हैं उनका ये बेहद जादुई आवाज का यह गीत।

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
8: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी

0: जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को

0: श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
1: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

0: नव भारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State government and Union Territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: குமார் அவர்களின் புல்லாங்குழலி இசை கேட்டும், திருச்சேரி பி கார்த்திக் அவர்கள் வயலின், ஆர்எஸ்ஆர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் மிருதங்கம், கே ஆர் சிவராமகிருஷ்ணா அவர்கள் கஞ்சிரா, வி சாய் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மோர்சை.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी. इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है. प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा.
2: हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है. लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं. निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है.
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं. भारत के युवा की यही असली नियति है. आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है. इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा.
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी. डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है. श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं. इसके साथ ही ये समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। और भारत ने हरारे में तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के अंतर्गत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन अपने हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।
2: ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के हमलों से बचाव के लिए उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उधर ईरान ने इलाके में हमले रोक दिए हैं। हाल ही में तनाव तब शुरू हुआ था जब ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों पक्षों ने रोजाना एक दूसरे पर हमले किए। अमरीकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में 1 की सैनिक की मौत हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
0: ईरान ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में वाणिज्यिक पोत पर कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
3: इब्राहिम अजीजी की यह टिप्पणी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के आरोप के बाद आई है। उन्होंने यूक्रेन पर ईरानी जलपोत पर हमले का आरोप लगाया था जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। सैयद अब्बास अराग्ची ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमले का आदेश दिया था। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे संधि का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ईरान इसका जवाब देगा। ईरान ने इससे पहले तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। यह राजनयिक विरोध व्लोदिमिर जेलेंस्की की उस घोषणा

0: के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर सहित रूस में सैन्य लक्ष्यों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलिवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
2: दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रांस में ऐतिहासिक शहर बॉर्डरो के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ती आग के कारण लगभग 2,20,000 लोगों को निकाला गया है। अटलांटिक तट पर स्थित कैंप फेरेट प्रायद्वीप में आग ने भारी तबाही मचाई है। पड़ोसी देश स्पेन में 75,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 30,000 लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 अन्य घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। हमले के बाद लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। अब्दुल ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का प्रयास भी किया था। जर्मनी के गृहमंत्री ने इस घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया। ये हमला शनिवार रात पार्क के पास उत्सव के समापन समारोह के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है।
3: मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलो वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही भारत T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को हराकर पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि प्रीति पवार ने मलावी की देबोरा मतेंजे पर जीत हासिल कर महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। पैरा पावर लिफ्टिंग झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों की विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 4 हुई। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक मिला और भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग के सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 23 और 24 जुलाई को भी वायुसेना ने 148 यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The government will introduce the public examination.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது மெல்லிசை. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी

0: सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराइदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former President and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defence and space research development. More from our correspondent.
1: Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialised in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th president of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा

0: व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
5: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में

0: सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ నుంచి వార్తలు ప్రసారమవుతాయి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మై మునీష్ శర్మ. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया. पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया.
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ.
1: 2026. विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हुआ तो उपसभापति श्री हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के वेल में घुस गए. श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की. हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया. दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया और इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है. श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. श्री चंद्र ने खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी की. असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार

0: வந்துட்டேன். சோலார் பேனல் தான் மாட்டியாச்சு, அப்போ மிச்சமான அந்த 4000 ரூபாய்க்கு ஷாப்பிங் போலாமே.
1: கண்டிப்பா, பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM Suryaghar.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
2: ஹர ஹர சூரிய ஹர.
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, invites applications from eligible candidates for filling up 52 tentative posts of Assistant Director Grade 2, Subdivisional Engineer, Group P Gazetted Non-Ministerial Post. The posts are available in various offices of the Central Water Commission across India and will be filled on deputation basis, including short-term contract. The selected candidates will be placed in pay level 7 as per the 7 CPC. Interested eligible officers may submit applications in the prescribed format through proper channel within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed vacancy information and application format is available on the official website. Kindly do refer to www.cwc.gov.in. I repeat, it is www.cwc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। जनसंपर्क अधिकारी, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रक्त आधान अधिकारी, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी विभाग तथा मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। जरूरी योग्यता, आवेदन करने का तरीका, आवेदन का फॉर्मेट, ईमेल और पोस्ट से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इत्यादि और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए एम्स भोपाल की वेबसाइट www.aimsbhopal.edu.in। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशासनिक अधिकारी लेखा का एक पद रिक्त है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत शर्तों की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.labasna.gov.in। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय नई दिल्ली में इन पदों को भरने की आवश्यकता है। सहायक रिक्तियों की संख्या 3, आशुलिपिक ग्रेड 1 रिक्तियों की संख्या 3 और उच्च श्रेणी लिपिक रिक्तियों की संख्या 2। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट www.handlooms.nic.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अविवाहित भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विशेषज्ञ सामरिक एनक्रिप्टरों के अभिकल्पन एवं प्रमाणीकरण के लिए 1 रिक्ति और सलाहकार सतर्कता के लिए 2 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.c.in। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए आवेदन। पदों की संख्या 9 है। भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जानी है और इसके लिए अधिक जानकारी हेतु आप देख सकते हैं वेबसाइट www.stpi.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को आवश्यकता है सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी और प्रशिक्षणाधीन सहायक उड़ान अनुदेशक की। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट igrua.gov.in पर करियर पेज देख सकते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 2 के 2 पदों और क्षेत्र का

0: कार्यकर्ता के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ncdc.mohfw.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में परामर्शदाता परियोजना समीक्षा का एक पद रिक्त है। वेतनमान, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे साथियों, यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। वक्त हो चला है परिक्रमा का।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
3: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन द 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट वैष्णवी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
2: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया।
3: Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issue will send wrong message to the country.
2: अमेरिका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट।
3: Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal.
2: ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक।
3: एंड 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप बिगिंस इन न्यू दिल्ली। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will observe CRPF Raising Day.

0: Yes, and celebrating a remarkable milestone in the history of India's security forces, we are observing today the 88th Raising Day of the Central Reserve Police Force, the CRPF.
1: आज का दिन उन वीर पुरुषों और महिलाओं के साहस, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता को नमन करने का है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सीआरपीएफ की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में केवल एक बटालियन के साथ हुई थी।
0: That's right, and from those humble beginnings, it has grown into India.

0: India's largest central armed police force, with 246 battalions serving across the length and breadth of the country.
1: CRPF को वास्तव में विशिष्ट बनाती है इसकी बहुआयामी भूमिका. आतंकवाद का मुकाबला हो, वामपंथी उग्रवाद से निपटना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में लोगों की मदद करनी हो, सीआर

0: लोगों की मदद करनी हो, CRPF हर चुनौती का डटकर सामना करती है.
1: Absolutely, Vaishnavi, and every mission reflects the force's guiding motto, service and loyalty. These are not just words, they are values that every CRPF personnel lives by every single day.
0: CRPF के कुछ विशेष इकाइयां भी हैं. क्या आपने रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के बारे में सुना है?
1: ऑफ कोर्स वैष्णवी, द RAF इज स्पेशली ट्रेन्ड टू हैंडल रायट्स, क्राउड मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सिचुएशंस विद प्रोफेशनलिज्म एंड सेंसिटिविटी.
0: और अभिषेक, फिर है कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, एक विशेष कमांडो इकाई जिसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में कठिन अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.
1: Yes, and it's truly inspiring, Vaishnavi, to see how these specialized units strengthen India's internal security while ensuring the safety of millions. But behind every uniform is a story of immense courage.
0: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने. पिछले कई दशकों में 2000 से अधिक CRPF जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनका अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
1: And every sacrifice reminds us, Vaishnavi, that while we go about our daily lives, these brave hearts stand alert, often far away from the families, protecting our peace and security.
0: आज जब CRPF अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है, तो ये केवल उसकी उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि उन मूल्यों का भी सम्मान है जिन पर ये बल गर्व करता है, यानी अनुशासन, साहस, पेशेवर उत्कृष्टता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण.
1: From the snowy mountains to dense forests, from bustling cities to remote villages, the CRPF has earned the trust of the nation through its dedication and resilience.
0: वास्तव में CRPF देश के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा बलों में से एक बन चुकी है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो.
1: So on this special occasion, Vaishnavi, we extend a heartfelt greetings to every serving and retired CRPF personnel and the families. Your service, sacrifice and commitment are deeply respected.
0: जी अभिषेक, और अंत में आइए याद रखें कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति केवल उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उन वीर सपूतों के समर्पण में भी निहित होती है, जो दिन रात उसकी एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं.
1: So here's wishing the Central Reserve Police Force a very proud and successful 88th Raising Day. And today we also pay a heartfelt tribute to one of India's most beloved sons, a visionary scientist and inspiring teacher, and the People's President Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, whose death anniversary we observe today.

0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बड़े सपनों, अटूट संकल्प और राष्ट्र सेवा की प्रेरक गाथा है। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनके विचार, उनके कार्य और उनका व्यक्तित्व आज भी लाखों लोगों, विशेषकर देश के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
1: And here I'd like to share something with our listeners, Vaishnavi, about the humble origins of Dr. APJ Abdul Kalam. He sold newspapers as a young boy to help support his family and fund his education. And later on, often called the Missile Man of India, Dr. Kalam played a defining role in strengthening India's defense and space capabilities. And beyond his scientific achievements, he will always be remembered as one of the greatest teachers our nation has ever known.
2: I designed a four-line poem-like thing called creativity. Learning uses creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great.
0: डॉक्टर कलाम की शिक्षा केवल कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं थी। चाहे वे किसी स्कूल में हो, विश्वविद्यालय में या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, वे हर युवा को बड़े सपने देखने, निरंतर सीखने और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते थे।

0: And Dr. Kalam was born on 15th October 1931 in the temple town of Rameshwaram in Tamil Nadu. Coming from a humble background, he proved that determination and education can overcome every obstacle.
1: उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की मजबूत नींव रखी.
0: And one of his landmark achievements came as a project director for India's first indigenous satellite launch vehicle or SLV-3.
1: जी अभिषेक, जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में सफल प्रक्षेपण भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी. इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपने ही देश में विकसित और प्रक्षेपित उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता थी.
0: And his contributions didn't stop there, Vaishnavi. Dr. Kalam was instrumental in the development and operationalization of the Agni and Prithvi missile systems, earning him the well-deserved title of the Missile Man of India.
1: डॉक्टर कलाम का मानना था कि यदि वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थान और उद्योग एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें तो भारत अपनी स्वदेशी तकनीक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.
0: डॉक्टर कलाम्स एक्सीलेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस.
1: इसके अलावा देश ने उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया.
0: एंड व्हाट्स रियली कमेंडेबल अबाउट हिज पर्सनालिटी वैष्णवी इज दैट डिस्पाइट होल्डिंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ही रिमेन्ड हम्बल अप्रोचेबल एंड डीपली कनेक्टेड विद द ऑर्डिनरी सिटीजंस.
1: अभिषेक, शायद यही कारण था कि उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था. उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपनी सादगी, विनम्रता, ईमानदारी और युवाओं पर अटूट विश्वास से भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीता.
0: एंड परहैप्स वन ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल मैसेजेस वैष्णवी वाज ड्रीम ड्रीम ड्रीम. ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन.
2: हिस्ट्री हैज प्रूवन that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.
1: अभिषेक, उनके ये प्रेरक शब्द आज भी हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और लोगों को अपने सपनों पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं.
0: Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. He said the former president inspired children and the youth to dream big.
3: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है. डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी. वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे.
0: एंड ऑन दिस सॉलम डे वी रिमेम्बर नॉट ओनली द साइंटिस्ट हु स्ट्रेंथेंड इंडियाज डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स बट ऑल्सो द टीचर हु इग्नाइटेड काउंटलेस यंग माइंड्स.
1: उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण में निहित होती है.
0: सो एज वी पे अ रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट अस कैरी फॉरवर्ड हिज विजन ऑफ अ डेवलप्ड, सेल्फ रिलायंट एंड एनलाइटेंड इंडिया.
1: अंत में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कलाम के आदर्श हमें निरंतर प्रेरित करते रहें और हर उस युवा को नई ऊर्जा और नई दिशा दें जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखता है.

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करने का। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता, हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717, 0112371

0: 1 7 1 शून्य छः और 0 1 1 2 3 3 1 4 4 4 4 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले चलते हैं शिमला की ओर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इन दिनों ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला मनाया जा रहा है। चौगान मैदान में आयोजित हो रहा ये 8 दिवसीय उत्सव श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस ऐतिहासिक व पारंपरिक मेले का शुभ आरंभ किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर मंदिर में अर्पित करने के बाद ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुनों के बीच शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुँची। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला अपने आप में एकजुटता को दर्शाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और जीवंत लोक परंपराओं का प्रतीक है।
2: ये अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मिंजर मेले के माध्यम से इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको संजो करके रखा है।
1: मिंजर मेले में गाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक ऋतुकालीन गीत कुंजड़ी मल्हार का विशेष महत्व है, जो प्रकृति, संगीत और स्थानीय लोक संस्कृति का

0: मेले में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच आयोजित पहली सांस्कृतिक संध्या ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शानदार शुरुआत का संदेश दिया। आयोजन में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। मेले के दौरान 8 भव्य सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिनमें बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला
1: से मैं रितेश कपूर। Yes, and from the Ninjar Mela, we turn our attention to a story from Nashik. The Catch the Rain Water Conservation Initiative, being implemented in Maharashtra's Nashik district, was recently praised by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat program.
2: Catch the Rain का संदेश बहुत सीधा है। जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: Let us now go over to our Mumbai correspondent to know more.
3: The Catch the Rain campaign has emerged as a successful model of water conservation in Maharashtra's Nashik district. Through strong public participation, interdepartmental coordination, and the effective implementation of various government schemes, under the initiative 2199 water conservation works have been completed at a cost of ₹257.93 crore, creating an additional 12,243 TCM of water storage capacity and bringing 2,931 hectares of land under new irrigation. Thanking the central government for recognizing the initiative, Nashik District Collector Ayush Prasad, who led the campaign, appealed to farmers to adopt and implement the Jaltara project on their farms, describing it as an effective measure for groundwater recharge and water conservation. Maharashtra's Nashik has created a successful model for water conservation by converging several government initiatives, including the Gal Mukta Dharan Gal Yukta Shivar scheme, Jal Yukta Shivar Abhiyan 2.0, the Pradhan Mantri Krishi Sanchayi Yojana, stream deepening and widening works, and various other state government schemes. This integrated approach has significantly strengthened water conservation and improved water security across the district. For Parikrama, this is

0: Yes, you are listening to a composition, A Meeting by the River by Vishwamohan Bhatt.
1: और श्रोताओं, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गायिका से जिनकी मधुरता ने भारतीय संगीत को कई भाषाओं में समृद्ध किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक, केएस चित्रा के बारे में। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं सहित 20 से अधिक भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: आज हम याद कर रहे हैं उस व्यक्तित्व को जिसे दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जानती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के सपनों में बस जाते हैं। एक साधारण नाविक परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम, जिसने आसमान को अपनी मंजिल बनाया, एक वैज्ञानिक जिसने भारत को नई उड़ान दी, एक राष्ट्रपति जिसने बच्चों को अपना सबसे बड़ा मित्र माना और एक शिक्षक जिसने आखिरी सांस तक ज्ञान बांटा। तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का बचपन किसी राजसी वैभव में नहीं बीता। सुबह सूरज निकलने से पहले अखबार बांटना, स्कूल जाना और रात में पढ़ाई करना, यही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सफर का अध्याय जिसने भारत के वैज्ञानिक इतिहास की दिशा बदल दी। आइए सुनते हैं इस बारे में इस खास रिपोर्ट में।
2: बचपन में ही डॉक्टर कलाम ने मेहनत का महत्व समझ लिया था। आर्थिक कठिनाइयों ने कभी उनके सपनों की ऊंचाई कम नहीं की। वे अक्सर कहते थे कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती, बल्कि आपका संकल्प करता है। विज्ञान के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया और इसी जुनून में उन्हें चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान एक घटना अक्सर याद की जाती है। एक परियोजना को समय पर पूरा न कर पाने पर उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। उस चुनौती ने युवा कलाम को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और तय समय से पहले परियोजना पूरी कर दी। यही अनुशासन और समर्पण आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बना। युवा अब्दुल कलाम भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। चयन परीक्षा देने के बावजूद जब उनका चयन नहीं हुआ, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने लिखा कि कभी कभी ईश्वर हमारी योजनाओं को इसलिए बदल देता है ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सके। यही असफलता उन्हें वैज्ञानिक बनने की दिशा में ले गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द।
3: When I was 23 fellow, that I will become a pilot, okay? I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was a 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months, then I flew SU-30. Message is, dream transforms into thoughts, thoughts result into action.
1: कहते हैं कि सपनों की असली परीक्षा तब होती है जब रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से साबित किया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का अवसर होती है। और यही नई शुरुआत उन्हें उस संस्थान तक ले गई जिसने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को बदल दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
4: वर्ष 1960 का दशक, दुनिया अंतरिक्ष की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। इसी दौर में वर्ष 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो

0: से जुड़े। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम किया। उस समय संसाधनों की कमी इतनी थी कि रॉकेट के पुर्जे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में ढोए जाते थे। डॉक्टर कलाम को भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 का परियोजना निदेशक बनाया गया। पहला प्रक्षेपण 1979 में किया गया, लेकिन मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। अगले ही वर्ष 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का ऐतिहासिक मोड़ था।
1: अंतरिक्ष में सफलता ने भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर कलाम का अगला लक्ष्य केवल आकाश तक सीमित नहीं था। अब उनका ध्यान देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की ओर था। आइए सुनते हैं इस बारे में इस रिपोर्ट में।
2: वर्ष 1982 में डॉक्टर अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO लौटे और हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने। 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसने भारत को स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई शुरुआत दी। वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर कलाम ने रूस के सहयोग से दुनिया की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस परियोजना को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई।
1: लेकिन विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में कभी अहंकार नहीं आया। शायद इसी विनम्रता ने उन्हें वैज्ञानिक से आगे बढ़कर एक लोकप्रिय जननेता बना दिया।
0: वर्ष 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने औपचारिकताओं से अधिक संवाद को महत्व दिया। देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राओं के दौरान वे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में छात्रों से अवश्य मिलते थे। इसी कारण उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। उनका प्रसिद्ध कथन, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था कि गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट्स जैसी पुस्तकें आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती हैं।
1: एक विरासत जो आज भी जीवित है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने स्वयं को पूरी तरह शिक्षण और युवा संवाद के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 को वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान ही उन्हें अचानक अस्वस्थता महसूस हुई और वहीं पर उनका निधन हो गया। ये संयोग ही था जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी युवाओं को सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसने अपनी अंतिम सांस भी विद्यार्थियों के बीच ली। उनकी जन्मतिथि 15 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर कलाम का सपना था एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक सोच वाला भारत। आज जब भारत अंतरिक्ष अभियानों, रक्षा तकनीक, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब उनकी दूरदर्शिता और भी प्रासंगिक दिखाई देती है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा से अर्जित की जाती है। शायद इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक स्थायी विचार हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurandhavan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिखरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end

0: their 5-day losing streak.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज़्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई. इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ.

0: गिरावट के साथ बंद हुआ।
1: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks Quality Tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3%, and Realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined, and 200 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाज़ार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पर विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है, और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है। और यही उम्मीद जो है बाज़ार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए, यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज़ को बाज़ार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉरपोरेट रिजल्ट्स। तो बाज़ार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉरपोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाज़ार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज, और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है।
1: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said. And I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
2: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was

0: expected in terms of performance.
1: Right. So the larger picture remains positive, green, and
0: that is
1: and
0: what
1: very, very optimistic.
0: That is what.
1: All right.
0: I
1: and particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
0: Yeah.
1: We have our first caller from Faridabad, Rajiv. Rajiv, welcome. Please ask your question.
2: Madam, I'm Rajiv Sharma, from Faridabad.
0: Namaskar, Rajiv ji.
2: Sir, एक मेरे को आप लोगों से शिकायत है. आप लोग किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम कंपनी स्पेसिफिक चीजें नहीं लेते हैं, लेकिन आप ही लोग स्पेसिफिक कंपनीज के रिजल्ट क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों?
0: राजीव जी, देखिए, हम किसी स्पेसिफिक कंपनी पर एडवाइस नहीं दे सकते. रिजल्ट्स जो है वो एक अनाउंसमेंट होता है पब्लिक के लिए, और ख़ास तौर पे जब लिस्टेड कंपनी होती है तो वो जनरल पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है.
3: राजीव जी, इसमें मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है. बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या
0: जी,
3: करना है.
0: बिल्कुल निखिल जी.
3: देवशिखा जी, अभी जो मानसून की बात चल रही थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि मानसून का परफॉर्मेंस इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी रिजल्ट्स अगर हम देखें और मानसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
0: देखिए, अगर आप मानसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है. मानसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है. अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया. तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट.
3: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. विक्टर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग विक्टर.
4: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम. सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस? Because we have seen lot of volatility in the gold prices.
0: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
1: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
0: Exactly.
1: And one of the diversifications is gold.
0: Gold.
1: You know, now do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
0: fluctuations. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw, or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
3: Deepshika, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise kharidari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai. To ye rahat ka ek keh sakte hain ki asar hai, ya matlab rahat ki baat hai kya, abhi bhi isme volatility hame dekhne ko milegi, utar chadhav dekhne ko mil sakte hain?
0: निखिल जी, देखिए, जिस समय तक वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. और सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है. तो अगर स्टेबिलिटी वहाँ आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है.
1: राइट. सो दीपशिका, यू नो, व्हेन वी टॉक ऑफ वॉलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी?
0: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ टुमारो यू नो द पॉज इज लिफ्टेड, देयर इज अगेन अ क्राइसिस, देयर वुड डेफिनेटली इट वोंट बी रेंज बाउंड. So what I'm saying is, if you have a durable piece in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps

0: सवाल पूछिए।
1: नमस्कार नितिन जी।
2: नमस्कार, मैं मैडम से ये पूछना चाहूँगा, जैसे हम गोल्ड लोन सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो छब्बीस का प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट से ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है, इसके लिए हम इसके क्या चीज़ चेक करें कि जो हमारे को चांदी और सोना
1: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है, लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है।
0: इसमें एक चीज़ उन्होंने और पूछी थी कि इन चीज़ों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
1: नहीं, तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है।
3: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
1: किस पर्पस से, अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है, तो आप
3: उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा,
1: उतने प्रोपोर्शन में, हाँ, तो आप वो खरीद के रख सकते हैं।
3: जी जी, भिलाई से वी हैव रवि। रवि, स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: गुड इवनिंग रवि।
4: मैडम, मुझे जानना,
0: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से,
3: द कॉल ड्रॉप, बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. BEL standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
0: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो आज प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.7% से ज्यादा ऊपर पहुंच गया। फ्रांस का कैक 40 1% के लाभ में था और लंदन के फुटसी 100 में 0.6% उछाल देखा गया। देख से कहा, लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देखा गया, उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
1: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है, जो पिछले समय काफ़ी गिरावट उसमें देखी गई थी, तो वहाँ ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है।
0: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस रवैया अपनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
1: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का, उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है, तो सिंगापुर में भी ये कोशिश की गई है, उसका भी असर

0: किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो।
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद निखिल।
0: एब्सोल्युटली दीपशिखा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज

वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की।

सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्य

कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य
इस पर विरोध

0: जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: நேரம் 8:15

0: बैर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं।

0: मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी

0: यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरूआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1

0: उनकी सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशिया

0: चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53kg category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the houses of

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सों जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत।

0: स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @YARNewsAlerts पर भी #AskYAR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सैंड फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू का है।
2: डेंगू और चिकनगुनिया का, मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, व्हाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की ज़रूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है।

0: जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है या कप है उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं आई बॉल उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते

0: का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में,
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी, ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: में ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है
1: जी।
3: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है।
0: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप
0: अपनी बात जारी रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
0: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज़ में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचानें और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जाँच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है, किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, या जांच अलग अलग होता है तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ये जिसकी कि सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जाँच करवाएँ, और जाँच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
0: अभी है? एक जी। योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी, जी।
0: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का,

0: पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत
0: कूलर की है। सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना भी जरूरी
0: रगड़ना जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ अब, यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: नमस्ते।
1: नमस्ते
4: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध
1: में अभी तक यही चर्चा कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं अब फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उस पर उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में। चार पांच
3: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है, और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण

0: जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
2: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
2: उसमें यदि 7 दिन से ज़्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा। और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 days,
2: तो लगभग ये 7 days का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था। आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफ़ी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर का?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
0: डेंगू के लक्षण, ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं।
1: चलिए डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
2: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं टाइगर मॉस्किटोज वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश वाकरोखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है अगर आप बच्चों को काटता है क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं,
2: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी

0: जैसे भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है
1: कई
0: इन
1: पहाड़ी
0: बीमारियों
1: जगहों
0: से।
1: पर भी है, जम्मू कश्मीर
0: पहाड़ी
1: में भी है, नागालैंड में भी है कुछ
0: बिल्कुल
1: पॉकेट्स में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें
0: जी
1: की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
2: देखिए, डेंगू को लेकर के तीन चार मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज़ की संख्या देखी जाती है,
2: रोज़ उसकी संख्या देखी जाती है, तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है और इस दौरान हाइड्रेशन का अप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है, जैसे कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
2: तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
2: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
3: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: विशेषज्ञों को नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
3: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
3: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
2: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
2: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
0: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है।

0: है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है
1: जी
0: ये क्यू डेंगा,
1: जी
0: ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यू डेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है।
1: भविष्य में
0: इंडिविजुअल
1: उम्मीद कर सकते हैं अपन।
0: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी,
1: जी
0: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। Dengue 1 और Dengue 3 माइल्ड होता है,
1: जी
0: और Dengue 2 और Dengue 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे,
1: जी
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में, तब उसका
1: पीयूष जी,
0: चिकित्सा।
1: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी ये इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहाँ कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें। ये बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यंग यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
5: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में

एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहले स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: debate. The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
1: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pavan Chandana and Nagabharat Daka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team or SIT headed by Inspector General of Police for Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Oleksandr Polishuk, following the attack on commercial vessel MV Omorifi, in which an Indian national was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. Odisha is grappling with an intensifying monsoon crisis as a deep depression over the Bay of Bengal continues to bring heavy rainfall across the state. The state remains on heightened alert as several districts have reported fresh flooding, waterlogging, crop damage and losses to infrastructure. In Sikkim, border trade between India and China through the Nathula Pass will resume from the 1st of next month, ending a suspension that has been in place since 2020 due to the COVID-19 pandemic. Trade through Nathula had resumed in 2006 after remaining suspended for more than 4 decades. And Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver in women's 53-kilogram category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championships bronze winner Gyaneshwari lifted 88 kilograms in the snatch section and 111 kgs in clean and jerk for a total lift of 199 kgs. Earlier, India's weightlifting queen Mirabai Chanu won the first gold medal for the country at the Games. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत ने जहाज हमले में भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। जेएएसी और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की और समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजदूत से वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत की चिंता यूक्रेन के अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में ईरान के वाणिज्यिक पोत पर हुए कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी।

0: उन्होंने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करने का संकेत भी दिया। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने के लिए एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: ये मार्च 52 दिनों से चल रहे विरोध आंदोलन के बीच हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। ये विरोध मार्च संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र में गंभीर स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: उधर बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार शाखा पांक ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तानी अधिकारियों ने 4 बलूच लोगों को जबरन गायब कर दिया है। पांक ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उसने कहा कि पाकिस्तान को जबरन गायब किए जाने की प्रथा को समाप्त करके और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे को सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताजा जानकारी के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 5.8% गिरकर 84 अमरीकी डॉलर और 14 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका सैन्य अभियान रोक देता है तो वो आगे और हमले नहीं करेगा। इसके बाद कीमतों में ये गिरावट देखी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दक्षिण पश्चिम हिस्से में अनियंत्रित जंगल की आग से निपटने के लिए आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आग के कारण फ्रांस में 2,50,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फ्रांस के गिरोंडे क्षेत्र में लगी भीषण आग ने पेरिस से 4 गुना बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जहां स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अवकाश शिविरों पर रोक लगा दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिनी कोलोन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनके साझा लोकतांत्रिक मूल्य और दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध चुनावी सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। भारतीय खगोलविदों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर निर्माण की प्रक्रिया में एक दुर्लभ ब्लू स्ट्रैगलर तारा BSS खोजा है। इससे तारों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत व्याख्या है कि ये तारे किसी साथी तारे से या तारकीय विलय के माध्यम से द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, जिससे वे प्रभावी रूप से पुनर्जीवित हो जाते हैं। ऐसी निर्माण प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी प्रमाण अत्यंत दुर्लभ है। भारतीय निशानेबाजों का चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी।

0: जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। एक रिपोर्ट।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल शूट आउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या अब तक 3 हो गई है। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
0: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने जहाज हमले में भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। जेएएसी और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please remain tuned in for the news in Hindi and English.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने

0: को कहा है। यूकेपी एनपी ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Daga of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gauran Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research.

0: Search or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई. मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ. इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले. निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे. लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की.
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई. इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ.
0: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks quality tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3% and realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined and 200 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई है. तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पर विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है. और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. उसके अलावा देखिए यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज को बाजार देख रहा है. अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स. तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है.
0: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth

0: story. So good results, as you said, and I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
1: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
0: Right. So the larger picture remains positive, green, and
1: that
0: and
1: is what
0: very, very optimistic.
1: That is what.
0: All right.
1: I
0: and particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
1: Yeah.
2: Deepshikha ji, अभी जो मॉनसून की बात चल रही थी, जिस तरह से expectation थी कि मॉनसून का performance इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी results अगर हम देखें और मॉनसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि market आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
1: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है. मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है. अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया. तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट.
2: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. विक्टर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: गुड इवनिंग सर.
1: गुड इवनिंग विक्टर.
3: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम. सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द गोल्ड प्राइसेस.
1: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10 to 15% of your portfolio.
0: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
1: Exactly.
0: And one of the diversifications is gold.
1: Gold.
0: You know,
1: now
0: do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
1: fluctuations. Exactly. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw, or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
2: Deepshikha, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise kharidari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai. To ye rahat ka ek keh sakte hain ki asar hai, ya matlab rahat ki baat hai kya, abhi bhi isme volatility hame dekhne ko milegi, utar chadhav dekhne ko mil sakte hain?
1: Nikhil ji, dekhiye, jis समय तक वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है. तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है.
0: राइट. सो दीपशिका, यू नो, व्हेन वी टॉक ऑफ वोलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वोलेटिलिटी?
1: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ टुमारो यू नो द पॉज इज लिफ्टेड, देयर इज अगेन अ क्राइसिस, देयर वुड डेफिनेटली इट वोंट बी रेंज बाउंड. So what I'm saying is, if you have a durable piece in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement.

0: नमस्कार नितिन जी।
1: नमस्कार, मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप गोल्ड लोन सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो 24 कैरेट प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट से ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है, इसके लिए हम इसके क्या चीज चेक करें कि जो हमारे लोग चांदी और सोना, सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन फिर फिर कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
0: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है, लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है।
2: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
0: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है।
3: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
0: किस पर्पस से, अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस, आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है, तो आप वो खरीद
3: के
0: प्रोपोर्शन में, हाँ तो आप वो खरीद के रख सकते हैं।
3: जी जी, भिलाई से वी हैव रवि। रवि स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
0: गुड इवनिंग रवि।
4: मैडम मुझे जानना,
2: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से,
3: द कॉल ड्रॉप, बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. BEL standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
2: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा। देखिए, लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देगा या उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
0: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है, जो पिछले समय काफी गिरावट उसमें देखी गई थी, तो वहां ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है।
2: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस्ड रवैया अपनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर से काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
0: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है, तो सिंगापुर में भी ये कोशिश की गई है, उसका भी असर डेफिनेटली उनके बाजार पर दिखाई दे रहा है।
3: So Deepshikha, when we see, and we were talking about volatility earlier, and when we see fluctuations of volatility in Indian market and other Asian and other markets, do you feel that because of India's dependence on crude imports, what's happening in the Gulf region is likely to

0: श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद निखिल.
2: एब्सोल्युटली. थैंक यू शिकारिया. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम. Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.

0: tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று திரைகானம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गाँव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने

टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலில் நிறைவு பெற்றது இந்த இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि ये हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के

विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,

0: दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी शिरीन सेन गुप्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तापस गुहो ठाकुरता और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो।

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனிய ராகம் ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டில். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உஸ்தாத் சுல்தான்கான் அவர்களின் சாரங்கி இசையும் ஸ்ரீ சேன்குப்தா அவர்களின் பாட்டும் கேட்டோம். பண்பலை இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र

0: के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना यूएसपी पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया तथा भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। एनआईएसएम में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। उन्होंने निरंतर सीखने पर बल दिया और पेशेवर विकास के लिए सेबी के समर्पित क्षमता निर्माण विभाग और शिक्षा पोर्टल का उल्लेख किया। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பண்பலைகள் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह माफ कीजिएगा एक बार फिर पढ़ लें कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक

0: किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओम फुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने जेएसी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कोरा परिषद क्षेत्र के नारीडों गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए 2रा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। मल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में 2रा स्थान हासिल करके एक और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के 3रे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. In the Lok Sabha, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date of information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months